0: सतरूद सजन ते पान करू तब धंधा।
1: इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जने पढ़ू था दरूद सजन ते पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमा।

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर से है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर।

ऐसा नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद, हैदर

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर है बरेगा सकी।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, बुड़ी 331 525 786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: शान रिजालत मौला।

इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता था किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वरगा सकीन कोई वेखी आए जग सारा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: कारोबार की
4: FM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी तो यो की छो छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जद बीमार छो यो किसो ता के आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जद बीमार छो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: हैंगम मिनाब ए सेरक ते बमबारी पढ़ी खबरू इदारे मूजिब अमरीका पारा ईरान ते वे पैमाने से बमबारी शुरू कई वही है। वेड़ाक जहाजन ए मिजारन वसीले स्टेट के खनन के निशानो बनाया पे वने। ईरान के मुख्तलिफ शहर में दिफाई फिजाई निजाम मोहतरक अमरीकी जंगवारे वजीर पेट हेक सच्चा वायदा से हाँ बमबारी वसीले ईरान से गाल कंदी। ईरान ते अज रात थींदड़ हमला सफारती पोजीशन के बेहतर बढ़ाईंदा। ईरान के कें भी सूरत में एटमी हथियार हासिल कर नींदी। अपना खुरमस जो कंट्रोल भी अमरीका वट ही होंद। अज रात ईरान के अहम स्ट्रेटिक हनन के तबाह किया वो। इन भेरे हमला सख्त ए वाजे हूंदा।

ईरान अमरीका खिलाफ़ जवाबी कार्रवाई शुरू कर छी। अरबिल में अमरीकी अडे से हमलों रेडार निज़ाम तबाह। अबन हुरमस में अमरीकी फौज ए पासदान इनकलाब विच में छकियों जो सिलसिलो जारी। ईरानी मीडिया मूजिब अबन हुरमस वेझो अमरीकी जंगी बेड़न के मिसाइल ए ड्रोन से निशानो बनाया वो। पासदान इनकलाब चवे था हथियारबंद फौज मुकम्मल तौर से तैयार है। अमरीकी अगराई जो भरपूर जवाब दिनों पे वे। अमरीकी सदर ट्रंप के कंट्रोल रूम ईरान ते हमले बाबत काबीना मेंबर की ब्रीफिंग। नायब सदर जेटी विंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेटलिफ, जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डेन केन, एस्टर विटकोफ ए बया आला मलदार सदर ट्रंप के ताजन हमलों बाबत आगाह किया। अमरीकी मीडिया मौजूद इजलास में मुख्तसर वक्त ईरान से वे पैमाने हमलों की मंजूरी नहीं पी जी ईरान के मुआदे लाए झुकाए सकें।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 231 525 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यूँ? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: क्या वहाँ पेंजे कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 231-5-5-786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अमरीकी हमलन बाद ईरान आमना हुर्मज़ मुकम्मल तौर से बंद कर छो। अमरीका खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन ए इराक में अमरीकी फौजी अड्डन से हमला। पासदरान में अहमद अल जाबर थानो बनाया। ड्रोन हमलों पे मरेलो मुकम्मल चुको है। दुश्मन बीहर अग्राही कई जवाब पेरे का सख्त हों। अपना हुर्मज़ में अमरीकी फौज ए पासदरान इनकलाब विच में चक्रियों सिलसिलो जारी है। ईरानी मीडिया मूजिब अपने हुर्मज़ में जो अमरीकी जंगी बेड़न के मिजाइल ए ड्रोन से निशानो बनाया।

दादू जे कच्छ वारे इलाके केटी खेड़ा जतोई में घिटी के मामले तां झेड़ो जतोई ए मरी प्राजी बिंदड़ में झेड़ो थियो। फायरिंग में बजणा कतल ब जख्मी थी पिया। मार्जिवलन में इमामदीन मरी ए सावर जतोई शामिल। एसएसपी मौजूब लाश खणण सूरत हाल ते ज़ाब्ते लाइ मुख्तलिफ़ थाणा जे नफरी इलाके में उमाणी वई आहे।

कश्मीर भरिसां हथियारबंदनि घर आॾो बीठल नौजवान खे क़तल करे छॾियो। कचे वारे इलाक़े में हथियारबंदनि नौजवान रहमतुल्ला मज़ारी खे फायरिंग करे क़तल कयो। लाज़ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले।

0: आईंदोदा पूर्व जो मीरामपुर वारे इलाके में हथियारबंदन की फायरिंग में एक जनो कतल बजना जख्मी मीरामपुर कोको पुल वट नामालूम हथियारबंदन की फायरिंग में बुढ़ल बिरोई के कतल किया वो वाके बाद जवाबदार फरार लाश अस्पताल मुंतकिल।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578 6।
6: जी हाँ 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: वो तमाम तर लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपने गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बबा खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलू। वो तमाम तो लोग जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे बरसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा, बख़ैर आगले जी आया नू, बिस्मिल्लाह, बोंजोर जाओ, निहाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है।
1: प्यार है, प्यार है।
0: तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप प्रोग्राम में मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी के साथ हम चलेंगे आगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

योगी जी प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह का कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा GFM88 और मेरे ख्याल से शायद अभी तक वहां पे पोस्ट अपडेट नहीं की गई. मैं चेक कर लेती हूँ, अगर तो की गई है देन हम उसको ओपन कर लेते हैं. हाँ जी, पोस्ट आ चुकी है. पोस्ट को आप देखेंगे, पेज के ऊपर होगी जिंदगी गुलजार है की पोस्ट, जो कि आपको नजर आ जाएगी. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है. और कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000111388. इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, और नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के बाद हम जाएंगे फिर से कमर्शियल ब्रेक की जाने में. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: তুমি ভালো হবে বাপা, গোটায় দে মুখে ভালো হবে বাপা, মৌলা করে তুমি ভালো মাতে দেও আমার এলা হাত চা থাই মুখাবে হেতর যার মিলা থাই মাতে দেও আমার এলা হাত চা থাই মুখাবে হেতর যার মিলা থাই মা ভল উরো তুয়া ভালো হবে বাপা মৌলা করে তুমি ভালো
1: তুমি চালাওগে কে
0: जी?
1: सारा आप ही सुना देंगे तो मैं चलाऊंगी क्या?
0: तुमने कहा कि सुनाओ तो मैं सुनूंगा।
1: अच्छा सिंगर सिंगर कौन है इस गाने का?
0: शमन अली मीराली।
1: शमन अली मीराली, ओके मैं सर हूँ। ओके और कुछ कहना है?
0: जी कुछ नहीं कहना बस।
1: ओके जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, जो कि आप लोग कर भी सकते हैं, सो कॉल कीजिएगा। और हम चलते हैं एक अदर सॉन्ग की तरफ, और जब तक हमें हमारा सॉन्ग मिलता है तब तक हम सुनते हैं जी आइटम नंबर, एंड हियर कम्स ब्यूटीफुल सॉन्ग आइटम नंबर। सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ DAFM 88 नेटवर्क ते।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: जो इलाज ऐं ऑपरेशन बेओलादी जो खास इलाज ऐं टेस्टूं हमल दौरान ब्लड प्रेशर शुगर ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज औरतुनि में गैर ज़रूरी पाणी ऐं खून जो इलाज याद रखंदा गरीब मरीजनि खे ख़ासि रियायत ॾिनी वेंदी डॉक्टर सुमेरा बिरोही औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर एड्रेस सिंध मेडिकल सेंटर VIP रोड लाड़काणो
1: टाइम रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं आचर सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं
0: वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0333-307-153
2: खुशखबरी ए टू ज़ेड यूनिफॉर्म सेंटर लाड़काणे ते अव्हां खे हर शइ मिले हिक ही छत हेठां अव्हां खे आला मयार जो यूनिफॉर्म घुर्जे मज़बूत ऐं स्टाइलिश स्कूल बैग्स या पायदार शूज़ ए टू ज़ेड यूनिफॉर्म ते मिले अव्हां खे यूनिफॉर्म स्कूल बैग्स शूज़
3: जो यहाँ तकदीर लाता है तकदीर बनाने वाले ने तो कमी ना की अब किसको क्या मिला किसको क्या ये तो मुकद्दर की बात है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम सागर भाई कैसे ठीक ठाक
3: खैरियत करें ठीक ठाक करें ठीक है आपकी
4: जी
3: मैं आप गाना तो सुना थे मैंने बात भी नहीं सुना
4: नहीं सुनाते आप आपके गाने
3: दिलावत जो नहीं है कम से जिंदगी ने मारा कभी रे दिल ने टूटा कभी रे दिल ने मारा।
4: अच्छा सागर भाई एक बात बताऊं ये वाला गाना जो है ना मैंने भी सर्च किया है और ये बॉलीवुड का गाना है पाकिस्तानी नहीं है।
3: बॉलीवुड का है?
4: यस
3: पाकिस्तानी है मैं?
4: नहीं पाकिस्तानी नहीं है ये किशोर कुमार का गाना है।
3: अच्छा
4: हाँ जी बिल्कुल
3: तो पाकिस्तानी सुना देता हूँ।
4: पाकिस्तानी मुझे आप बता दें कौन सा प्ले करूँ जल्दी
3: सुनाऊं? नहीं
4: नहीं सुना ही नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है आपका गाना हम चला देंगे जितनी देर में आप सुनाएंगे मैं आपको प्ले करके सुना भी दूंगी ठीक है जल्दी से बता दें
3: आ जाओ मैं
4: आ जाओ वे माहिया किसके किसकी आवाज में
3: नुसरत फतेह अली खान का है आ जाओ माही
4: ओके आ रहा है अब इसको सुने एंजॉय करें और मेरा साथ दें स्टे ट्यून्ड अल्लाह हाफिज़ ये रहा गाना।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आज का जो टंग ट्विस्टर है डैड इज, जो कि आप लोगों ने कह के दिखाना है, फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. ठीक है, ये कहना है फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. इसको कह के दिखाएंगे तो जो बंदा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को. ठीक है,

0: जी 0300111348 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. और मैसेजेस और कमेंट्स बहुत सारे आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो कमेंट्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जी. और हमारे रमेश कुमार खत्री हमें सुन रहे हैं और बहुत सारे नाम लिख भेजे हैं आपने. अब्दुल रजाक हमारे से मौजूद है, रेहान खान भक्कर से हमें सुन रहे हैं, सॉरी रेहाना खान आपको मैंने रेहान खान बना दिया. ओके कोई बात नहीं, कॉल्स लेना स्टार्ट करते हैं जी. सो इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं.
1: हाफिज लखमीर.
0: हाफिज लखमीर, मुझे ये बताएं टंग ट्विस्टर बोलेंगे.
1: दीदी बताइए बताइए क्या है.
0: टंग ट्विस्टर ये है कि फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए.
1: फालतू?
0: हाँ जी फालतू. रुक जाए. अच्छा और कुछ कहेंगे.
1: अरे आप रिंदा क्या बुखार. हमें गाना सुनाइए. कल आपने मेरा गाना प्ले नहीं किया था.
0: कौन सा वाला?
1: बहुत बराबर यार साल मौलाई का गाना है. मेहरबानी करके प्ले करो, आपकी बड़ी मेहरबानी.
0: ओके जी प्ले करते हैं. थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और 0300111348 एक और कॉलर. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. बाकी क्या हाल
0: है जी? खैरियत है. कौन कहाँ से?
2: शहर गुलाबगढ़ कोट बशान खान से. शहर गाजी खान रिंद.
0: गाजी खान रिंद भाई कैसे? ठीक ठाक
2: अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाओ.
0: अच्छा मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं.
2: जी बिल्कुल सुना.
0: ओके तो टंग ट्विस्टर सुनाए.
2: हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे.
0: सुना दे.
2: बात ने फॉर्म वाले.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं गाना नहीं.
2: फॉर्म फिट किए.
0: गाना नहीं. हेलो भाई गाना नहीं. टंग ट्विस्टर सुनाए.
2: बात ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. बात ने वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. बात ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. बात ने
0: ओके जी. और कुछ?
2: मैंने तो धुन में सुनाऊंगा आपको.
0: गाने वाला सेगमेंट खत्म हो गया भाई मेरे. ठीक है अपना ख्याल रखें बहुत सारा. अल्लाह हाफिज. और 0300111348

0: ओके जी, इसी के साथ नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं और सॉन्ग के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा मेरे पास और ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन ZFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज.
1: अरे वाह.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 3315257786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और आप सुन रहे हैं किनारे, ब्यूटीफुल सॉन्ग. और सॉन्ग के साथ साथ आज का जो

0: तो मैं
1: दोबारा लग गई। आज की अच्छी बात बता दें।
0: आज की अच्छी बात ये है कि मैम गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी कहा हुआ था कि बंदों को बोल दो कि पानी ज्यादा पियो।
1: अच्छा चलें, ये तो प्रिकॉशन हो गई ना, तो अच्छी अच्छी बात क्या है? हेलो
0: हेलो जी
1: जी जी, अच्छी बात क्या है सोच रहे हैं आप? सोच

टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है. सो फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिट चैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे वाले ट्रांसमिशन में. तो सुनना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार साइन आउट. अच्छा जाने से पहले एक मैसेज नजर आया है मुझे. सलाम बाजी जुल्फिकार अली खोड़ो फ्रॉम आखिर बाजी शो नाई से प्लीज प्ले मास्टर मंजूर कल चलाएंगे. लास्ट में सुनाओ बाजी रुखसार को मयार मिल जाएगी. अच्छा लास्ट में अब ये वाला सुने. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. लिव सिंपल बट थिंक हाई. दिस इज मी आरजी रुखसार साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमाने खुदा, अल्लाह हाफिज़.

अमरीकी हमलन जे जवाब में ईरानी फौज जा खिते में मौजूद अमरीकी फौज अॾनि ते हमला। पासवान इनकलाब चयो आहे त बहरीन में अमरीकी फौज जे फिफ्थ फ्लेट में कुवैत में फौजी अॾे खे निशानो बणायो आहे। कुवैत में अलिसाम ऐं अहमद अल जबा एयरबेस खे निशानो बणायो वियो। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस ते मिज़ाइल्स फायर कया विया। बहरीन जे घर वज़ारत मौजूद फिज़ा में तबाह कयल ईरानी ड्रोन जो मलबो किरण सबबि हिकु नीगरी ज़ख़्मी थी आहे। कुझु घरनि खे नुक़सान पहुतो। पाकिस्तान पारां अमरीका ईरान में ताज़ी छिकताण ते गणतीअ ज़ाहिर धुरियुनि खे सब्र खां कम वठण ऐं जंगबंदी ते अमल करण जी अपील। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरबाबी चयो आहे त खिते में जारी मौजूदा सूरतहाल ते गणती आहे। तकरार ॻाल्हियुनि ऐं सफारतकारी ज़रिए हल करणु घुर्जे। पाकिस्तान जूं खिते जे अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ सफारती कोशिशूं जारी आहिनि। इसराइल ऐं लबनान में थियल जंगबंदी बि मस्बत अकबराई आहे। इसराइल खे जंगबंदी मुआदे ते अमल करणु घुर्जे।

गाज़ी अहमद भरिसां पुलिस अहलकार जो लाश अथ। पुलिस चवण आहे त अहलकार जबल जमाली जो लाश कमरे में मिलियो आहे, वधीक जांच करियूं पिया। कश्मीर भरिसां हथियारबंदनि घराडो बीठल नौजवान खे क़त्ल करे छॾियो। कचे वारे इलाक़े में हथियारबंदनि नौजवान रहमतुल्लाह मज़ारी खे क़त्ल कयो। दोदापुर वेझो मीरामपुर वारे इलाक़े में हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो क़त्ल, ॿ ॼणा ज़ख़्मी। कोको पुल वटि नामालूम हथियारबंदनि जी फायरिंग में ॿुढल विरोही खे क़त्ल कयो वियो। जवाबदार फरार।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदी निक एडो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252578।
4: जी हां 2315525786
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
6: स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय Biocon International Pakistan.

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंजब दंदड़ा सबनी खूबसूरत मासूम ऐ सोने समाज उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दुआओं के समान दो चाहतों की बारिश उल्लास वल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नी से जाकर कमी से आसमां तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो वीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, यानी कि आप लोगों की खूबसूरतियां आप लोगों को बताई जाती हैं इस प्रोग्राम में कि किस तरीके कार को फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन और खूबसूरत बनते जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपकी खूबसूरती अब आप लोगों के हाथों में है। तो बिल्कुल जी बताएंगे बहुत ज्यादा वाली बातें जो कि आप लोगों को बताने के लिए ही होती हैं। इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हाँ जी जनाब आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जरा आपने अभी तारीफ करवाते हैं लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो चलिए जी ब्यूटीफुल बनने के लिए रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ साथ मौजूद रहने के लिए। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बताएंगे कि आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ अपने हाल चाल भी बताते जाइए तो डियर लिसनर्स हालत कैसे ही आपकी हालत हो, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनल यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे में आपके साथ मौजूद रहूंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इसी मोहब्बतों के साथ ही आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल जी पूरी 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो बताएंगे जी बहुत ज्यादा वाली बातें बताएंगे, इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बताओ जारी रे आली सिद्रा अली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के इस्तेमाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के इस्तेमाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज़ से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगाज़ से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही प्यारी सी नात के साथ, एक बहुत प्यारी सी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है। तो हम सोचते हैं कि वाली जो नात है ना ये आप लोगों के समातों की नजर करते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

0: ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी, जहां जहां तक अवेलेबल हो चुके हैं या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे कि कहां कहां पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए या फिर आप चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में भी मिलने चाहिए, तो बिल्कुल आप बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आई हूं। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे ये लगता है कि ये सवाल जो है ना वो मुझे आप लोगों से पूछना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम आजकल जो है ना वो मोबाइल के बगैर जो है हमारा जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। थोड़ा सा क्या, मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है आजकल। हम तो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल के बिना शायद जिंदगी जो है ना हमें अच्छी लगेगी भी या नहीं। तो मेरा ये आज आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि आप लोगों से अगर आप लोगों का सेल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए, यानी कि नो मोबाइल एक हफ्ते के लिए, तो आप मुझे बताएं कि उस एक हफ्ते के अंदर आप क्या कुछ करने वाले हैं विदाउट सेल फोन। ओके, तो आज के प्रोग्राम का बिल्कुल ये जो है ना वो सवाल ही टॉपिक है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का जो फोन है ना, मोबाइल है ना, ये ले लिया जाए पूरे एक हफ्ते के लिए, तो उस एक हफ्ते में बिना फोन के आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुने वाले लिसनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी, पोस्ट को ज्यादा वाली जो है ना वो लाइक शेयरिंग दिया करें ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सके कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होते रहते ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, मार्केट जाते हैं तो जरा सी ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि जो इतने सारे प्रोडक्ट उनको दिखाए जाते बताए जाते तो वो सारे प्रोडक्ट उनकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों का जहन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और आप अगर मार्केट जाएं तो आपने क्या परचेज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश आप लोगों के लिए है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है, और उसके अलावा जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली आप लोगों को मार्केट से मिलने वाले हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर, आपके गोट में, आपके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया, 03-15-799-0595 ये नंबर याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते को आप किस तरह जो है ना वो गुजारने वाले हैं बिना मोबाइल फोन के। फर्ज कर लें जरा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप एक हफ्ता। ओके जी, तो आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके उनमें हमारे साथ यहाँ पर आदिल हुसैन मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, खुश शाहीन जी जी सफा खुश था बुदा की आयो, कहते हैं सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बिल्कुल जी, और अब्दुल कपूर कैसर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उसके अलावा अब्दुल गफूर कैसर आ कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच, और हिदायतुल्ला कहते हैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई थी, अगले ही दिन बचा हुआ सालन खराब हो गया क्योंकि फ्रिज में रखना ही भूल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है सिदरा, आज ये सॉन्ग चला दे असांजे करे लाड़कानो समझो इंग्लैंड थी, लिंक भेजू। बिल्कुल जी, आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा। और वफा मीर मुनवर अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, और मोलाई मुजाहिद बोजार में सुन रहे हैं ठूफ चूसल से। خیریت السلام علیکم سڈو جی کیڑا حال آہن امید تے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا اسا تہاں کے شو میں ویلکم تھا چوں اسا بھی تہاں کے شو میں ویلکم تھا چوں بہت شکریہ خوش آمدید مہارا زمان بھائی آ چکے ہیں ویلکم محمد زمان بھائی اور محمد علی کھوسو ہمیں سن رہے ہیں مٹیاری سے محمد علی کھوسو بھائی آپ کا بھی ویلکم کرتے ہیں ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام اور اس کے علاوہ ادنان نور ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام کہتے آر جے گوئنگ ویری ویل انرجیٹک اسٹارٹ بہت شکریہ ادنان نور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہدایت اللہ کہتے ہیں ادیب تو نے نوٹ کیا ہے کہ تمہارا فریج چلتا تو ہے لیکن گھر سے باہر نہیں چلتا ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو چلتی تو ہیں لیکن وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تو ٹینشن نہ لے اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت ہے انتظار کرنے کی تم کرواتی رہو ہم کرتے رہیں گے سلام ادی خوش آئے یس ماں ٹھیک تھا بجا اج بلا ادی چاہے تو وہ خیر تھا اور کہتے او نو یہ کیا پوچھ لیا آج بالکل جی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ والا سوال پوچھ لوں اشوک کمار ہمیں سن رہے ہیں اشوک کمار بھائی ہیلو ایس این آر بانی وعلیکم السلام کہتے او مائی فیوریٹ آر جے آپ کیسی ہیں لکھتے ہیں ویلکم ٹو دا شو وائٹ ایش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید اور مولائی مجاہد بوزار کہتے سڈو جی آج ایک سانگ پلے کریں گی پاکستانی مووی کا یہ دل آپ کا ہوا سانگ وہ لڑکی ہے یا جادو سڈو جی لاہوتی ساجن چانڈیو بھی آپ کا شو سن رہا ہے اچھا یعنی کہ ٹھیک ہے جی گانا آپ نے اچھا بولا ہے تو لازمی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے اور بہت شکریہ آپ دونوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے پروگرام میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک کو فالو کرتے رہیے کہ اگر آپ لوگوں سے ایک ہفتے کے لیے آپ کا فون سیل فون موبائل لے لیا جائے تو ایک ہفتہ آپ کیسے گزارنے والے ہیں کیا کریں گے بتائیں مجھے جلدی سے اور ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس اپنے ایریا میں اویلیبل کرانا چاہتے ہیں دین آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-799-0595 ڈائل کرتے جائیے خوبصورت ہوتے جائیے یہاں پر ٹائم ہوا جاتا ہے ذرا شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو سنتے رہیے انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں
1: سچل کی سرم سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
3: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
2: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM
3: 90.4
0: सां हफ्तो गुजारे वेंदसि उन्हनि खे उॾारण ऐं दाणो ॾियण में उन्हनि सां टाइम पास थी वेंदो आहे इहा बि ॻाल्हि आहे कबूतराई माण्हू अलॻि ई दुनिया जा माण्हू हूंदा सही आहे बाबा सही आहे इंजॉय कयो पंहिंजी ज़िंदगी और नज़ीर खोसो में सुन रही हूं बलोचिन सांसे भाई आपका भी बहुत शुक्रिया वेलकम और शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है हेलो अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए अच्छा उन खां अलावा हिन जी दर्द दिल कहती की रास्ते कभी खत्म नहीं होते लोग हिम्मत हार जाते हैं अगर आज मुश्किल वक्त है तो याद रखो सूरज भी हर रात के बाद तुलू होता है अपने ख्वाबों पर यकीन रखो क्योंकि नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक कोई उसे मुमकिन ना बना दे बिल्कुल जी आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी है दर्द दिल आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है हिदायत ला कहते हैं न बाबा ओनली जियो अच्छा दिलीप कुमार मेंगवार हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं और तव्हां खे असांजो शो पसंद अची पियो सो मोहबतूं आहिनि प्यारे भाउनि जो किशोर भाई कहते हैं मां अच्छा वॻा पाता हूं तो घोट लॻंदा हूं इहा ई ॻाल्हि आहे न जॾहिं मर्द जेको आहे न अछो वॻो पाईंदो आहे त वाक़ई घोट लॻंदो आहे इन लाइ मर्द जो शान आहे बाबा अछो सूट पाईंदा कयो सुहिणा लॻंदा आहियो ऐं वरी जॾहिं तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻाईंदा पोइ त बाबा छा ॻाल्हि करे तव्हांजी ऐं जेके माण्हू अञा ताईं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कोन कनि पिया सो उन्हनि खे चवंदमि बाबा छा था सोचो एतिरो न सोची न कयो जेको करणो आहे सो करणो आहे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणो आहे ऐं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट मौजूद आहे यानी कि हाणे तव्हांजी का बि बहानेबाज़ी न हलंदी छो त हिते तव्हांखे हर हिकु प्रोडक्ट मिले थो जंहिंमें तव्हांजे लाइ नाइट क्रीम बि आहे तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम बि आहे साबुण बि आहे फेस वॉश बि आहे एक्नी ट्यूब बि आहे अञा ॿियो छा खपेव जेके जेके माण्हू आहिनि अलॻि अलॻि मसलनि सां फेस कनि पिया उन्हनि जे चेहरे ते अलॻि अलॻि मसला आहिनि जीअं तव्हांजे चेहरे ते दाणा आहिनि या फिर तव्हांखे का सुठी नाइट क्रीम नथी मिले तव्हांखे का फेयरनेस क्रीम नथी सुठी सूट करे त बाबा तव्हांजे लाइ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे सो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका एवोकाडो एलोवेरा ऐं मिल्क सां तयार कई वई आहे ही टई चीज़ूं हुन जे अंदरि एड कयूं अथसि तॾहिं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम तयार थी आहे ऐं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे फ्रेश बणाईंदी आहे फेयर बणाईंदी आहे क्लियर बणाईंदी आहे सोणो बणाईंदी आहे सो मर्द हज़रात हुजनि या ख़वातीन तव्हां ॿई इस्तेमाल करे सघो था उन खां अलावा जेके माण्हू दाणनि जी वजह सां परेशान आहे शदीद वारो परेशान आहे त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तयार कयो आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे ही बाबा ॾाढो ज़बरदस्त ट्यूब अथव उन्हनि माण्हुनि जे लाइ ख़ासि करे जेके पंहिंजे चेहरे जे दाणनि जी वजह सां परेशान आहे सो अगरि तव्हां बि एक्नी खे ख़तमु करणु चाहियो था त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मौजूद आहे आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जनाब ऐं तव्हांजे एक्नी सां फाइट कंदो आहे तव्हांजे एक्नी खां अलावा तव्हांजा निशान आहिनि जेके फेस ते उहे ख़तम थींदा आहिनि तव्हांजे चेहरे ते कोई कट जो निशान आहे कोई सड़न जो निशान आहे कोई केतिरो पुराणो निशान आहे जेके तव्हां रिमूव करणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे उन खां छुटकारो हासिल करे सघो था उन खां अलावा इस्तेमाल करण तरीक़ेकार बि ॿुधायां थी पर पहिरियां सभु प्रोडक्ट जे बारे में त ॿुधी वठो ऐं तव्हांजे लाइ व्हाइट एश ब्यूटी सोप बि मौजूदु आहे ऐं व्हाइट एश जो फेस वॉश बि मौजूदु आहे सोप जेका उहो एलोवेरा एवोकाडो ऐं मिल्क सां तयारु कयो वियो आहे बाक़ी जेको फेस वॉश आहे उन जे अंदरि वाइटमिन सी मौजूदु आहे ठीकु आहे इहो इन्हनि ॿिन्हिनि में डिफ़रेंस आहे उन खां अलावा अगरि तव्हां सोप लॻाईंदा त सोप लॻाईंदा अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा त तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा ईज़ी ऐं अगरि तव्हां व्हाइट एश लवली क्रीम जे बारे में नथा ॼाणो त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त व्हाइट एश लवली क्रीम हिकु उहा वाहिद क्रीम आहे जेका फेयरनेस क्रीम सां गॾोगॾु हिन जे अंदर सनस्क्रीन बि एड कई वई आहे यानी कि हिन में ॾिसो था तव्हांजे लाइ केॾो मतिलबु हिननि फ़ाइदो सोचियो आहे त जेके बि असांजा सोणा सोणा लिसनर असांखे ॿुधनि पिया जेके जेके सोणा माण्हू पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखणु चाहिनि था त हुनजे लाइ बिल्कुलु उन ई तरीक़े जो प्रोडक्ट हुजणु लाज़मी आहे त अगरि तव्हां बि व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त बाबा वाइट एज लवली क्रीम जगह ही एकड़ी फेयरनेस क्रीम आए पर सिर्फ फेयरनेस क्रीम ना है जी अंदर एड़ियों चीजों एड थियल आन जो रेडिएंट अल्ट्रा वाइटामिन से तैयार कई वही है जिन्हें ट्रीह वाइटामिन जो कैप्सूल एड आन ट्रीह वाइटामिन जो कैप्सूल यानी कि तवाजी स्किन के कोई भी वाइटामिन की कमी आए तो पूरी थी वही जैसे तुम वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करना है जिन वाइटामिन डी है वाइटामिन ई है वाइटामिन सी है वाइटामिन बी थ्री है उनका अलावा सनस्क्रीन भी एड अथस जिन तक अलग से सनस्क्रीन लगानो न पवे अड़ी गर्मी के मौसम में तवाजी स्किन से सनस्क्रीन भी लाजमी जरूरी होंद है अगर तुम सनस्क्रीन नथा वो या फिर नथा इस्तेमाल कर तो टेंशन वन की जरूरत ना तुम वाइट एज लवली क्रीम लगाए सको था वाइट एज लवली क्रीम तवे स्किन से ग्लो भी दी तवे स्किन के प्रोटेक्ट भी कदी उन सिज के असरात का जो सिज जहा असरा तवे चेहरे के नुकसान पहुंचाई समझो था सो वाइट एज लवली क्रीम तुम डी जो लगाए सो था रात जो लगाए सो था नंढा बार हुजन वड्यू मायू हुजन मर्द हुजन कुराड़ा आयो था सब हणी सो था छो तो वाइट एज लवली क्रीम एतरी जबरदस्त क्रीम है जो तुम्हें मजो दई छी सो वाइट एज लवली क्रीम तुम लगायो तुम्हारी खूबसूरती सफाई चमकंदी वतंदी उनका अलावा बो उनका अलावा सोप फेस वॉश की अगर गाल क्यों तो वो भी ऑल स्किन टाइप के लिए तुम बिल्कुल हर कोई इस्तेमाल कर सके तो बाकी हाँ लगान जो तरीकेकार तो बिल्कुल लगाने के तरीकेकार यही आन अगर तुम वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर वाइट एज की ब्यूटी क्रीम तुम रात के टाइम इस्तेमाल कर सो तो एकड़ी नाइट क्रीम है रात के टाइम तुम इस्तेमाल कर अलावा फेस वॉश तुम पे लाजमी कजो फेस वॉश कर वाइट एज ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर सो था अलावा अगर तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगान चाहो था तुम्हारे चेहरे के दाणा है उन्होंने खत्म करने के लिए तो तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब रात के टाइम इस्तेमाल कर अलावा तुम फेस वॉश लाजमी कदा कर कोई भी प्रोडक्ट तुम लगा था वाइट एज लवली क्रीम हणो था या डॉक्टर पिंपल ट्यूब हणो था या वाइट एज ब्यूटी क्रीम हणो था इन्हें इस्तेमाल करने का पेड़ तुम मुंह लाजमी धोनो है सही आज मुंह धो पे फेस के सफा क्लीन कर क्लियर कर प्रोडक्ट अप्लाई कर स्किन से तद ही जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से रिजल्ट दी है सो प्रोडक्ट के सही तरीके से इस्तेमाल अगर तुम क्या तो बिल्कुल सुनो रिजल्ट मिलन है सो सुठे रिजल्ट हासिल करने लाइन तुम्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना पवंदा तो बिल्कुल जनाब इस्तेमाल करना हलो पानी खूबसूरती के वधाईंदा हलो बिल्कुल तमा भी हसीन प्यारा थियण चाहिंदा हुंदा सो तुम वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर सको था तुम्हारे एरिया में तुम्हारे गोठ में तुम्हारे सिटी में नथा मिलन तो पोई तुम डायल कयो 03-15-799-0595 ओके जी डायल कीजिएगा नंबर और साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब भी देते जाइए तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें आप लोगों से आपका मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो एक हफ्ता वो आप कैसे गुजारने वाले हैं क्या करेंगे उस एक हफ्ते में अगर आपका सेल फोन आपके साथ ना हो तो

हमारा प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए. अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है आरजे सिद्रा. आपकी खातिर मेरी आपी और भाभी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सोप के साथ इस्तेमाल कर रही है और मैं खुद व्हाइट एश लवली क्रीम लगाता हूँ और मेरा भाई सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाता है. और जी, ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही फ्रॉम लाड़काना. इमरान भाई, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. और उसके अलावा हेंची ये कहते हैं, बाजी टॉपिक का जवाब है, मैं पूरा हफ्ता सो जाऊंगा. पूरा हफ्ता कैसे सोएंगे, इतनी नींद आती नहीं है. और इमरान अली बिरोही भाई, हमारे साथ शुक्रिया. फकीर मोहम्मद हमारे साथ ही पाक आर्मी पनो आकिल से कहते हैं, साकी आवाज बहुत प्यारी है और आप टैलेंटेड भी बहुत है, माशाल्लाह खुश रहें. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. मीरपुर खास अब्दुल्ला महर, अस्सलाम वालेकुम. बाजी टॉपिक है, मोबाइल के बिना एक हफ्ता क्या एक मिनट भी नहीं रह सकता. अब आगे जियो करें, हाजिर साइन जियो तक आयो. और ये हमारे साथ एक कौशल कहती है, जन्नत आप कैसी हैं? आपकी जन्नत बिल्कुल ठीक ठाक है. आप बताएं कौशल, आप कैसी हैं? और कहती हैं, वो तो मैंने बताया था ना, ये आपकी गलती है कि आप शो सही से सुनती नहीं है. और उसके अलावा क्या कहती हैं, आपका शो बहुत बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच मेरी प्यारी. इरम कहती है, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त. कल चले फिर आपने साइलेंट होकर शो सुना, फिर बताएं आपको कैसा लगा. अच्छा, जो लोग शो में शामिल होते हैं फिर वो अगर साइलेंट होकर शो सुने तो फिर थोड़ी कैफियत अलग सी होती है कि उनको ये चीज ना मजा नहीं देती कि भाई हमें तो मैसेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है. और ये कौशल कहती है, जन्नत अगर आपसे ले लिया जाए फोन तो आप क्या करेंगे? मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ. मैं वैसे ही फोन जो है ना वो कम यूज करती हूँ. अच्छा साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम. माशाल्लाह मैं बेस्ट आरजे सिद्रो, आप कैसी हूँ? आपका शो मस्त है जिससे. ठीक है. और कहती टॉपिक भले ले जाओ, मैं तो चली जाऊंगी अपने गांव. हाँ भाई, गांव में वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते हैं. एम कहती दिलबर आपकी कल से मेरी तबीयत वाकई थोड़ी सी अजीब हो गई है, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है मेरा और मुझे जुकाम हो गया है, तो ये कल से है सूरत हाल. आप दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाओ. और ना अलावा जी को आते जी की मानो के फेसबुक बुधो पया बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो. और तुम्हारी शेयरिंग मुख्य थोड़ी कम नजर अचे पाई, ई छू कंदा आयो. अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी, क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ. ओके जी, आप हमारे साथ साथ हैं और क्या कहती हैं? नाइस भी आपके साथ.

हमारे साथ हैं ओके जी, वेलकम वेलकम। और आदिल कहते हैं कि जेकॾहिं मुझो मोबाइल एक हफ्ते लाए वठी वने कोई तमाम आईने सा सेल्फी कढंदस पोए समझ में इंदी त अपलोड कंदा सी कढें कढें अपलोड कंदो जदी आईने सा सेल्फी कढंदा तो अपलोड किए थी आई तो हर 5 मिनट बाद खीसे में हथ हणंदस मोबाइल न मिलंदो त पंजो कन चिकींदस अमर खे चवंदस मुंहिंजो दिमाग़ हैंग थी वियो आहे वी स्टार्ट जो बटन काॾां आहे किथे आहे अछा ऐं पाड़े जे ॿारनि खां पुछंदस भाउ वाई फाई जो पासवर्ड उहे चवंदा चाचा असां वटि बि नेट नाहे हफ़्तो पूरो थींदो त मोबाइल खे ईअं भाकुर पाईंदसि जीअं गुम थियल प्यारो वापसि मिली वेंदो हुजे अच्छा ये तो बड़ी भई आपने अच्छी अच्छी बातें शेयर कर दी अगर वाकई सेल फोन हमसे ले लिया जाए तो शायद कुछ लोगों की कैफियत ऐसी हो सकती है हाँ जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं जी असन कहते हैं टॉपिक भले ॾह ॾींहं मोबाइल खसे छॾनि पर वाह ई कोन्हे हाँ कुझु माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि अच्छा वासू भाई कहते अदी सिधो ॻाल्हि अथई सिधी मां सिर्फ़ वाटेश वारनि जो साबुण वठंदुमि तव्हां साबुण वठो फेस वॉश वठो पर वठो त सही न हिकड़ी शइ इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त बाबा वाकई प्रोडक्ट में दम आहे सो तव्हां लाज़मी वठो इस्तेमालु कयो उन खां अलावा दर्द दिल कहती टॉपिक चंदा क्या करती मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं तो आज सोच लेना आप सोच कर मुझे बताएंगे अगर एक हफ्ता आप लोगों से फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले क्या कुछ करेंगे जल्दी से बताएं प्रोग्राम कैसे बनते जाएंगे यहाँ पर टाइम हो जाता है कि हम न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ माजूर शख्स की दरख्वास्त बुधणी अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारा जमा करायल जवाब जो अख्तियार ते कावड़ जो इज़हार। SPSC जे चेयरमैन सेक्रेटरी कंट्रोलर जमल जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कर छा टिन्हीं जणन के तोहीन अदालत जो नोटिस भी जारी सूमर ते पेश थियण जो हुकम। अदालत रिमार्क थींदे चयो अदालती हुकम ते अमल न थियण ते बाबति जवाब डिनो वञे।

अमरीका ईरान जे अमन गालन दौरान एक बेत हमला अमरीकी फौज तेहरान ए बंदर अब्बास से बम्बारी टामहाक मिजाइल जो इस्तेमाल जानी नुकसान थियण जा इतला न मिलिया सैनका मूजिब हमला ईरानी जहाजत बाद कया वा जन के हाने रोको वो है सदर ट्रंप चाहे तो अमरीकी फौज 49 टोमहाक मिजाइल ईरान से फायर कया तेहरान से मौजूदा हमलों में इसराइल शामिल ना है जैसे ईरान मुआदो न कर तो बम्बारी कर संदन हालत खराब कर छड़ी अमरीकी हमलों के जवाब में ईरानी फौज जा खिते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डन से हमला पात्रा इनकलाब चाहे तो बहरीन में अमरीकी फौज के फिफ्थ फ्लेट ए कुवैत में फौजी अड्डे के निशानो बनाया है कुवैत में अली असलम अहमद अल जबार एयरबेस के निशानो बनाया वो बहरीन में शेख ईसा एयरबेस से मिसाइल फायर कया व्या बहरीन के घरू वजारत मौजूद फिजा में तबाह कल ईरानी ड्रोन जो मलबो किरण सबाब एक नींगरी जख्मी थी है कुछ घर के नुकसान पहुंचो

0: छा अवा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

विटामिन ई बीट्स ऐं जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूलो अवांजी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाए बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातनी और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जिनके बारे में जानकर आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है. उसी से रिलेटेड जरा हम बात करेंगे यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो इनके क्या फायदे और इनको आप किस तरीके का ना इस्तेमाल करने वाले ये मैं आप लोगों को बताऊंगी. और इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को ना वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. ओके जी सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें एक हफ्ते के लिए आप लोगों से आप लोगों का सेल फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप किस तरह से गुजारने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे. ठीक है जी जल्दी से बताइए. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं मुझे बताते जाइए. फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं 8821 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं. और रेहान अली हमें सुन रहे हैं कहते गुड शो थैंक यू वेरी मच. रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद कहते हैं आपको भी.

अगर बात की जाए तो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले जान लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फायदे कितने ज्यादा हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताने लगे हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। इसके अंदर जो है ना वो तमाम तरह चीजें ऐड की गई है जो कि एक अच्छे वाले प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ये एहसास होता है कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज भी पहले से पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आप लड़के हैं लड़कियां हैं सबको इस्तेमाल कर सकता है। एक और मजे की बात की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड फॉर्मुलेशन के साथ जो है ना वो तैयार की गई है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रीम साबित होने वाली है। और इसी के साथ साथ ये आपकी जल्द की जो है वो आपके जल्द की अंदर तक जाकर आप लोगों की खूबसूरती को बहाल करती है और आपके जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम और मुलायम बनाती है और हमेशा आपके स्किन को तरोताजा रखने में मदद देती है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाकायदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपके जल्द जो है वो बेरोनकी अगर आपके जल्द में आ चुकी है बहुत ज्यादा तो वो कम हो जाती है, आपका चेहरा ज्यादा रोशन और साफ नजर आता है। और उसके अंदर जो है ना जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीड्स शामिल किए गए हैं और ये जो माइक्रो बीड्स फार्मूलेशन तैयार किया गया है तो ये बहुत ही एक अच्छा फार्मूला है जो कि आप लोगों को हर किसी को लगाना चाहिए, खास करके उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी स्किन के ऊपर जो है ना कोई प्रोडक्ट जल्दी में सूट नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर ना कोई भी प्रोडक्ट जल्दी में सूट नहीं करता और वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारी स्किन के लिए भी क्या कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो बिल्कुल ये जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है वो वाकई ऐसा महसूस करेगी कि हमारी स्किन के लिए भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात हैं या फिर खवातीन हैं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है जो कि डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। और डी स्किन फेस वॉश के हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है और जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है और आप लोगों को ये अंदाजा हो जाता है कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मर्द हजरात हो खवातीन हो। और इसी के साथ साथ जब डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल करेंगे तो इसे आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिएगा यानी कि सुबह दोपहर और रात के टाइम। और रात के टाइम तो लाजमी आप इस्तेमाल करें क्योंकि रात के टाइम जब आप फेस वॉश करके सोते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों के फेस पर होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्म्स आपके स्किन पर जमा हो जाते हैं जब आप उन्हें रात को भी रिमूव नहीं करते हैं, रात को भी फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तब आप लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना ये एक्ने आ जाते हैं, रिंकल आ जाते हैं और निशानात बन जाते हैं, आपकी स्किन जो है ना वो मरना स्टार्ट हो जाती है। जब आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जिंदा रहे, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे तो आपने रात के टाइम जो है ना फेस वॉश लाजमी करना है चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। तो गर्मियों के सीजन में तो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि भाई फेस वॉश ईजी से हो जाता है, आराम से हम कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों के सीजन में थोड़ा सा आप सोचते हैं कि भाई नहीं करते। लेकिन आपने यही चीज याद रखनी है कि सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो आपने रात का फेस वॉश बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रात के टाइम फेस वॉश करें, सुकून से अपनी स्किन को क्लियर करें, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना शुरू करें। और जब आप 2 रातें इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तब आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है आप इस्तेमाल करके देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में आपकी सिटी में आपके गोट में नहीं मिल रही तो आपने डायल करना है 03 15 799 0595।

ओके जी, ए एम अंसारी कहते हैं यूप अवेलेबल ऑन एवरी शॉप इन नवाब शाह, मुझे फ्री में दिलवाए ना। अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है। और कहते हैं मुझे भी गोरा चिट्टा होना है प्लीज। मुलाए पारत करायो वाइट एश आईडी स्किन वारन के कसम अथव मासी चपरान जो, न न मासी चपरान जो कसम न जो, खैर तवां जे लाए जेको न असा अवेलेबल कराए छडिया त आनी तवां के जेको न फ्री में भी जाराइंदास, टेंशन न वठो बस तवां तवां जेको आ त चिट्टे थेण जे लाए थोड़ो मेहनत कंदा कयो, तवां के या चीज खबर होजन घुरजे तो मार्केट में केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आ आई केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होजन सा गड उई तवां जी स्किन जे लाए जरूरी आ याद त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तवां जे एरिया में मिलन था त बिल्कुल तवां के डियारिंदास, तवां गिफ्टिंग वारो सिस्टम स्टार्ट कंदासीं, पर थोड़ो टाइम गुजरन दियो।

बिल्कुल बाबा ब्रांड आडी स्किन प्यूरी क्रीम तो लाजमी लगाए जो उन्हें खा अलावा तहां से एरिया में नथो मिले तो नंबर जो ना लाजमी डायल करना कयो नंबर आहे 03 15 799 0595 नंबर ते राबतो तमा कयो जी तमा जे एरिया में अवेलेबल

0: अच्छा अशफाक कहते हैं कि सिदरा लाहौर मां केड़े दुकान था मिलंदा तवा मालूम त मुखे बुधायो किथे
1: कॉपी करे करे मानू चरे अथी व्याहिल
0: अच्छा ऐसन कहते हैं पर तवा शो न कयो त पो असा के मोबाइल सी जरूरत नाहे अच्छा मानी अगर असा शो कयो था तरी ता मोबाइल जको इस्तेमाल कयो पया चलो या भी सुठी गाल या भी असा ने कामयाबी अच्छा ये अशफा क्या कहते हैं अच्छा चलें ठीक है ठीक है और रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है रिहाना आपको वेलकम करते हैं और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है अनवर भाई तवाजो मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो प्यार टॉपिक चौथा बो मसलो ना है पर तवाजो प्रोग्राम एफ बी की है बुधन रस हाँ वाकई यह सोचने वाली गाल ए एम अंसारी कहते हैं कि वेटिंग कंदे मां ब्लैक थी वेंदस अल्लाह न कंदो तमा वाइट वाइट थी वेंदा आई तमा थोड़ो सबर कर थोड़ो वेटिंग कयो सही
1: है दुनिया में चेंज थी असा भी ब्रेंड सा जा यार
0: अच्छा तो कने कने मानन की वेटिंग जो फायदो मिलंदो आए सो वेटिंग करण भी सुठी गाल है तमा जेको ने नंबर ते राबतो करे वेठो ठीक है अच्छा कुछ डी पेरिया एकड़ी गाल थी हुई उहा मा तां सा शेयर कंदस पर हते डिठो वने ते टाइम थियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो या गाल मुखे वेठी वेठी याद अची वई जडे एम चयो त मुखे फ्री में गिफ्ट डारायो तडे इन गाल ते जेको न मुखे गाल याद अची वई मा तां के बुधाया थी थोड़ो सबर कयो पोस्ट के तमा लाइक एंड शेयर के ना हेलो आई मुखे बुधा ता केड़ो प्रोडक्ट वठन जी तमा के जेको ना तमा सोचो था केड़ो प्रोडक्ट तमा वठी चुकायो इस्तेमाल भी कयो पया तो ता जेके मानु अन्या सोचन था ना उनन जला यो आ ता बाबा ता जल्दी वेठो देर न कंदा कयो अगर तमा भी देर कंदा ता तमा भी ब्लैक ब्लैक थी वेना तो मायो नथी चाहे ता ब्लैक थी वेना ता वाइट वाइट हो जो आई ता सोना सोना हो जो आई ता वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बिनी जो इस्तेमाल कयो उन के अलावा जल्दी मोटी चांदी तमा ने तमा करे न मंजो मा ओही वनी ओही अचा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड Keep listening. White Age and E-Skin Beauty Show is sponsored by White Age Beauty Products and E-Skin Beauty Products. Lagate rahiye, khoobsurat hote rahiye.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

यहाँ पर हमारे साथ हैं मकसूद मलहा को वेलकम करते हैं। साइमा मीर कहती हैं लाड़काना की हर चीज अच्छी होती है, जैसे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, और लोग तो और भी क्या बातें प्यारे हैं जी। माशाल्लाह अब मेरी सदरा को ही देख लें। हाँ जी, बस सदरा को ही देख लें। उसके अलावा नूर सिंतुनियो हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। साइमा मीर कहती है सिड्डो की जुकाम गर्मी वाला। हाँ भाई, गर्मी वाला जुकाम हो गया मुझे, ये वाकई खतरनाक होता है, सर्दी वाले जुकाम से भी ज्यादा। तो बस दुआ कीजिएगा ठीक हो जाऊं जल्दी से। और उसके अलावा अच्छा ये गाना लगाया, ये स्पेशली हम शोनी को डेडिकेट करेंगे। शोनी

ओके शोनी क्या कहते हैं, शोनी कहती हैं आप जान में भी आ गई आपके शो में, आप ही अभी लंच करके अपने रूम में आई हूँ और मेरा आप शो सुन रही हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपने क्या सोचा है, कब लगाएंगे?

अच्छा इमरान भाई, मुमताज मलिक का गाना चल गया ना एक, तो फिर ये वाला गाना आपका हम कल सुनेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इरम कहती है यार जवाब है, मैं मोबाइल से बेजार हूँ, अगर कोई एक महीने के लिए ले ले मुझसे मोबाइल तो मैं आपको MP3 में सुनूंगी और आपके पास SMS के लिए अरीबा से फोन लेकर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। क्या बात है, आपने तो पहले से सोच रखा है। चले बहुत बढ़िया। अच्छा प्लीज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम करते हैं आपको। और उसके साथ साथ हैं जी इरम कहती है, अच्छा बहुत शुक्रिया प्यारी। अच्छा ये फौजी पठान खान कोसो में सुन रहे हैं भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा मीर कहती सिडो ये वाला सॉन्ग बच्चे घर में खेलते खेलते गा रहे थे तो एक बच्चे ने एक लफ्ज का मतलब पूछा, मैंने मतलब तो बताया लेकिन कहा के बाद आपका मैसेज जो है वो मिसिंग पार्ट हो चुका है। साइमा कोशिश करें ये कहा के बाद में जो आपने कहा है वो जरा दोबारा भेजिए मुझे। हाँ भाई जैसी गर्मी चल रही है तो मोहब्बतें गई भाई, जुती जरूरी है, ऐसे नहीं घूमा जाएगा।

जी बिल्कुल, ये गाना ट्रेंडिंग चल रहा है. और नखा अलावा जेको आसो के कसा सकेडा. अच्छा गाना खत्म हो चुका है, सो हम यहाँ पर दूसरा वाला गाना लगाते हैं. ये जी गाना होने वाला है बहुत ही ज्यादा प्यारा.

अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा अलीजा टॉपिक का जवाब दे रही है कि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं तो अच्छा चले मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा आपका शो सुनकर कॉल भी वो मेरे मोबाइल से करती है, आपके मोबाइल से करती है, लेकिन आपने कभी बात नहीं करी है, इतनी क्यों शर्मीली है आपने दब। अच्छा किशोर भाई कहते मानू अलाए कि साइलेंट थी शो बुधन था हू भी तो जड़ी आरजे जो ना मुमकिन आ मू वी मिनट अलाए कि पाण के रोकियो मां भी सोचा अलाए काडे वयो अदो मुके लगे पे अज भी ता सुमी प्यायो नडी वांगे

अजय साइमा तो गाना कौन सा था वो भी बताएं मुझे जरा। अच्छा शोनी कहती है जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगी तो वहां से लूंगी क्योंकि मैं सारी चीजें वहां से लेती हूँ, अगर वहां पर ना मिले तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से परचेज करके जाइएगा। ठीक है, देखिए मुझे कितना आप लोगों का ख्याल है।

अच्छा ए एम अंसारी कहते हैं सिडो मेरा खर्चा आपने बढ़ा दिया, कोई मुझे कह रहा है कि शाम तक मिल जाए वाइट एज के प्रोडक्ट्स। सच्ची बोले ये तो अच्छी बात है ना, थोड़ा खर्चा भी कर लिया कर। और वासु भाई कहते अदी सिडो असांजा ही बकला के तमा सा गड प्यारा गुजरंदा है, ऐ मुजा भी यकीन करो। मोहम्मद अली खोसो कहते हैं एक हफ्ते के लिए मेरा कोई सेलफोन ले जाएगा, पूरा हफ्ता वो मुझे भी ले जाए अपने साथ। चले ये ठीक है। अच्छा आदिल तमा जो गाना सुभाणी बुधंदा से ठीक है।

हा बाबा एते ही गाल ती छो नाराज थी वेंदा आहिनि ढोल वरी पो मनीदा नहीं है अच्छा ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है और इसी के साथ साथ जी आप हमारा शो सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाइए डी स्किन फेस वॉश आपके लिए आप लगाइएगा और साथ में व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए तो जनाब आप लाजमी जो है वो ट्राई करके देखिएगा बिलाल अली कहते हैं हर रोज कोई आपके शो की लिंक मेरे आईबी में शेयर करता है यार सोचा ओपन करके देख लो चलिए आपने बहुत अच्छा किया वैसे तो अब हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म होने को आ रहा है बिलाल सो आपको वेलकम करते हैं कल आप मुझे 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा ठीक है अरे किशोर भाई कहते नन्ना तवान जो शो इत मुखे एक्टिव रखे थो अल्लामा सदको मोहम्मद सुमान कहते आज के सवाल आज का सवाल ना ऐसा है जवाब देने से पहले मायूस हो जाते हैं बात वैसे सही आप कह रहे हैं और दर्दे दिल कहती है पता नहीं क्यों पता करवाए ना मैंने जानना था

वाकई इतने सादा और बेवकूफ लोग हैं, हम वाकई इतने सादा और बेवकूफ लोग हैं कि जरा सी अपनाइए, थोड़ी सी तवज्जो और चंद मीठे अल्फाज मिले तो हम अपनी जात के सारे पर्दे खुद ही हटा देते हैं। बेवकूफ लोग हैं कि जरा सी अपनाइए, थोड़ी सी तवज्जो और चंद मीठे अल्फाज मिले तो हम अपनी जात के सारे पर्दे खुद ही हटा देते हैं।

ओके जनाब, से प्रोग्राम व्हाइट एज एंड एज इन ब्यूटी शो का जो वक्त है वो खत्म होने को आ चुका है। साइमा मीर, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे डाटा करी बच्चों को। और ये जी हजार खान भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। गुलाम रहीम बलोच हमें सुन रहे हैं, आपका शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। ओके जी, और यहीं पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात आपकी और हमारी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है डेली बेसिस के ऊपर। और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाहें, जिनके फीडबैक्स रह चुके हैं उनसे माजरत करते हैं, जिनके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में उनसे जनाब यही कहूंगी कि कल आके आगे गाने लगा दूंगी। हाँ वाकई मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कहीं मैं गजनी तो नहीं हो गई। मैं वाकई बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ और प्रोग्राम में बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाली होती है लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ। वाकई लगता है कि मैं अब गजनी होती जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा वाला, मुकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐ हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: ओ सदका

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिर्फ तुम्हारी सूरत दे थे सफर के तुझे प्यार जी जरूरत मुझो सुकून तो चैन मुझो तू।
1: आज घरों में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने की तालीम ही नहीं है। भाई भाई के लिए, बाप औलाद के लिए, ख्वाह कितनी मर्जी कुर्बानी दे लेकिन एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से ही शुक्रिया की तालीम नहीं दी जाती। और इस जमन में एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। एक दफा हवाई जहाज में जा रहे थे, कोई यूरोपियन औरत थी, वो अपने बच्चे को चम्मच के जरिए चावल खिला रही थी। हर चम्मच खिलाने के बाद बच्चे से कहती से थैंक यू, वो बच्चा अपनी जबान से शुक्रिया के अल्फाज अदा करता, तब वो उसे दूसरा चम्मच देती। इस तरह तालीम और तरबियत से तो शुक्रिया उसकी गिट्टी में पड़ जाएगा, क्या वो बच्चा बड़ा होकर शुक्रिया अदा नहीं करेगा? हालांकि शुक्रिया की तालीम तो हमें शुरू से ही दी गई है। कुरान और हदीस इस बात पर गवाह है, कुरान की इब्तदा शुक्र के अल्फाज से ही हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जन्नत की इंतहा पर भी शुक्रिया के अल्फाज हैं। जन्नती जब अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा नेमतें देखेंगे तो बेख्तियार कहेंगे वह आखिर दवाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, भी शुक्र अदा नहीं करता। तो ये जो छोटी छोटी सी पॉजिटिव चेंजिंग है, अगर ये आप अपनी लाइफ में लाएंगे तो इससे आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव असरात होने हैं।

वफ़ाक़ी हुकूमत जे मुल्क में महांगाई 38% ताईं घटि करण जी दावा, तरक़ी जी शरह हद खां घटि थियण जो एतिराफ़, ॾेई नाणे जा ज़खीरा बि मुस्तहकम हुअण जी दावा। वफ़ाक़ी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। ॾाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब शहवाद चैलेंजेस बावजूद मैशियत सुठी कारकर्दगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मैशियत जो खातो 452 अरब 10 करोड़ डॉलर थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब 10 करोड़ डॉलर आहिनि। मुआशी तरक़ी जी शरह बि 3.7% रही। खेते ॾिसो त हाल ठीक हुजे त 4% ताईं तरक़ी वारी शरह हासिल करे वञूं हा। मालियाती खसारो 0.7% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.99% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.7% रही आहे। सिंध में पाणी बहरान ते वरी वज़ीर मुराद अली शाह जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे ख़त। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरिहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबाशी वारे वज़ीर जाम खान शुरू चयो आहे त इरसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी खोड़ खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी खोड़ दौरान डेम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखे पंजाब खां पहिरियां थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलणु घुर्जे। पंजाब चश्मा झेलम कैनाल समेत फिल्ड कैनाल ज़रिए पाणी

खणी रहा है। गुजरियल साल इन सीजन में गुड्डू वट 1,35,000 क्यूसक पानी मिलो, हाँ रुगो 75,000 क्यूसक पानी मिली रो है। सिंध से गड बलोचिस्तान भी पानी खोट सबब मुतासर थी रहा है। पानी खोट है तो बराबरी की बुनियाद से विराई वाले।

सिंध ऐं बलोचिस्तान में पाणी जी शदीद खोटवारो मामलो क़ौमी असेंबली ताईं पहुची पियो। पीपल्स पार्टी एमएनजी सिंध ऐं बलोचिस्तान जी घुर्ज मौजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन भटो जवाब ॾींदे चयो त सिंध में 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी कोर्ट खे मूड़े रहियो आहे। पाणी बाबति इरसा में थियल फ़ैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। सिंध में शामिल हो ऐं PPMNA नवीद कमर चयो त इरसा जा अंगनि अखरनि सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे, इरसा कानून खां मथां फ़ैसला कया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन भटो चयो त इरसा में इतफ़ाक़ राय सां फ़ैसला थिया आहिनि। अॼु सिंध खे 1,40,000 क्यूसिक पाणी जारी थियो आहे। PPMNA शाज़िया मरी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त नाहिनि। इरसा पाणी वारी 1991-90 ते अमल दरामद न करे रहियो आहे। सिंध में सूरत हाल संगीन आहे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

कांच की खुशियां बिकती होती, कांच की खुशियां बिकती होती और दुखों का ठेला होता, एक टके में आंसू आते और मोहब्बत चार टके में, पांच टके में सारी दुनिया, मुफ्त हंसी और मुफ्त सितारे, चांद भी टुकड़े टुकड़े बिकता, ख्वाहिश नाम की चीज ना होती, हाथ बढ़ा के सब मिलता, हम चाहते तो मर जाते, ना जी चाहता तो जीते रहते, ऊंचे नीचे शहर ना होते, पानी पर भी घर होते, काश के अपने पर होते, और वो गहरा नीला अंबर, सात समंदर पार के साहिल, जंगल नदियां गिरता पानी, सब कुछ अपना धन होता, काश खुशियां बिकती होती, काश के खुशियां बिकती होती, खुशी ओढ़ के सोते, रातें दिन भर रुकती होती, काश के खुशियां बिकती होती, काश के खुशियां बिकती होती। मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे सब के सब खो गए हम बड़े हो गए। मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे सब के सब खो गए हम बड़े हो गए, जिम्मेदारी मुसलसल निभाते रहे, बोझ औरों का खुद ही उठाते रहे, अपना दुख सोच कर रोए तन्हाई में महफिलों में मगर मुस्कुराते रहे, कितने लोगों से अब मुख्तलिफ हो गए हम बड़े हो गए हम बड़े हो गए, और कितनी मुसाफत है बाकी अभी, जिंदगी की हरारत है बाकी अभी, वो जो हमसे बड़े हैं सलामत रहे, उन सभी की जरूरत है बाकी अभी, जो थपक कर सुलाते थे खुद सो गए हम बड़े हो गए हम बड़े हो गए, खत्म होने को अब जिंदगानी हुई, जाने कब आई और कब जवानी हुई, देखते देखते क्या से क्या हो गए, जो हकीकत थी अब वो कहानी हुई, मंजिलें मिल गई, हम सफर खो गए हम बड़े हो गए हम बड़े हो गए।

0: हम खुदा हाफिज।
1: खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी।
0: वेल जनाब, जो लोग शमन की आवाज को लाइक करते हैं, हम सबके लिए शमन अली मिराली का उर्दू सॉन्ग एंजॉय कीजिए। स्ट्राइक को मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस इवनिंग।
2: कल रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एगेन योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
7: हाय हाय हाय

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4 90.4

सिंध ऐं बलूचिस्तान में पाणी जी शदीद कोट वारो मामलो क़ौमी असेंबली पहुची वियो। पीपल्स पार्टी MNS जो सिंध ऐं बलूचिस्तान खे घुर्ज मूजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। पाणी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटू जवाब ॾींदे चयो त सिंध 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी खोट खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पाणी बाबति इरसा में थियल फ़ैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। इन्हनि फ़ैसलनि में सिंध बि शामिल हुई। PPMNA नवीद कमर चयो त इरसा जा अंग अखर सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे, इरसा कानून खां मथां फैसला कया आहिनि। शाज़िया मरी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त नाहिनि। इरसा पाणीअ वारी 1991 ठाह ते अमल दरामद न पई करे।

अमरीकी सदर ट्रम्प अॼु राति ॿीहर ईरान मथां हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। ट्रम्प चयो आहे त ईरान खे अॼु राति ज़बरदस्त निशानो बणायो वेंदो। ईरान सां इहो ई कंदासीं जेको वेनेज़ुएला सां कयो हो। ईरान जी बहरिया, फज़ाइया ऐं दिफ़ाई सलाहियत मुकमल तौर ख़तम थी चुकी आहे। जल्द गैस ऐं तेल जी मार्केट में असांजी हिकु हटी क़ाइम थींदी।

0: It's 6:15 PM.
1: Chat is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har pehar zindagi ki lehar, GFM 88 network, Sindh ki aawaz.
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
5: सब्जी वालो, ताजी सब्जी खाओ, अदा गोश्त महागो, मुर्गी महंगी, मच्छी महंगी, ताजू सब्जी खाओ, सेहत बढ़ाओ।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु रात ईरान मथां ॿीहर ताक़तवर हमलनि ऐं जल्द तेहरान जे तेल ऐं गैस ज़खीरे ते कब्ज़ो करण जी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तेहरान सां बि उहो ई कंदासीं जेको वेनेज़ुएला सां कयो हो। ईरान जे खारक बेट ते कब्ज़े खे बहितर सम्झां थो। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे ट्रंप चयो त ईरान जी बहरिया, फज़ाइया ऐं दिफ़ाई सलाहियत मुकमल तौर ख़तम थी चुकी आहे। ईरान माहिदे लाइ ॻाल्हियूं करे पियो पर संदन रवैयो ठीकु आहे। इहो बि मुमकिन आहे त जल्द तारीख़ी माहिदो थी वञे। ईरान ते हमलनि जो ज़िमेवार अमरीका हूंदो। नतीजा बि अमरीका ऐं संदन सहूलतकारनि खे भोगणा पवंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी धमकियुनि ते ईरान जो रद्द अमल। ईरान जे नायब परडेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त ईरान खे ॻाल्हियुनि ऐं माहिदे लाइ धमकियुनि सां झुकाए नथो सघजे। आरज़ी जंगबंदी जो को बि फ़ाइदो न पियो थिए। वफ़ाक़ी हुकूमत जे मुल्क में महांगाई 38% ताईं घटि करण जी दावा। तरक़ी जी शरह हदफ खां घटि थियण जो एतिराफ़। परडेही नाणे जा ज़खीरा बि मुस्तहकम हुअण जी दावा। वफ़ाक़ी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकरदगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मईशत जो खातो 452 अरब $10 करोड़ थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब $10 करोड़ आहिनि। मुआशी तरक़ी जी शरह बि 3.7% रही। हिते जी सूरतहाल ठीक हुजे हा त 4% ताईं तरक़ीअ वारी शरह हासिल करे वञू हा। मालियाती खसारो 0.7% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.79% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾियुनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.1% रही आहे। सिंध में पाणीअ जे शदीद बहरान ते वॾे वज़ीर मुराद अली शाह वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे ख़त लिखी छॾियो। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो आहे त इसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी कोट बर्दाश्त करे पियो। सिंध में पाणी कोट दौरान डैम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखी पंजाब खां पहिरीं थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलणु घुर्जे। पंजाब चश्मा जहलम केनाल समेत फ्लड केनाल ज़रिए पाणी खणी रहियो आहे। गुज़िरियल साल हिन सीज़न में गुडू वटि 1,35,000 क्यूसिक पाणी मिलियो। हाणे रुगो 75,000 क्यूसिक पाणी मिली रहियो आहे। सिंध सां गॾु बलोचिस्तान बि पाणी कोट सबबि मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी कोट आहे त बराबरी जी बुनियाद ते विरायो वञे।

0: 10 सैकड़ो का वधिक पतकड़ो पानी कोट के मुंह डेई रो है। पानी बाबत सामे थियल फैसलन ते अमल थी रो है। इन फैसलन में सिंध भी शामिल हुई। पीपीएमएलए नवीद कमर ईसा जा अंग अखर सिंध हुकूमत रद्द कया है। सिंध में फसल पोखण लाय पानी ना है। ईसा कानून का मथा फैसला कया है। शाजिया मरी वफाकी वजीर जा अंग अखर दुरुस्त ना है। ईसा पानी बारे 1991 ठा ते अमल दरामद न पई करे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
8: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
7: 0331252586।
8: जी हां बुड़ी 3315257786
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki aawaz.
4: Maal taiyar hai, truck khada hai, mazdoor khade, bas ek cheez ka intezar hai, payment. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
6: सुनते रहो GFM 90.4.

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के

0: लिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प अॼु राति ईरान मथां ॿीहर ताक़तवर हमलनि ऐं जल्द तहरान जे तेल ऐं गैस ज़खीरनि ते कब्ज़ो करण जी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त तहरान सां बि उहो ई कंदासीं जेको वेनेज़ुएला सां कयो हो। ईरान जे खारग पेट ते कब्ज़े खे बहितर सम्झा थो। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे ट्रम्प चयो त ईरान जी बहरिया, फज़ाइया ऐं दिफ़ाई सलाहियत मुकमल तौर ख़तम थी चुकी आहे। ईरान अछो झंडो फड़काए शिकस्त तस्लीम करे सघे थो, इहो बि मुमकिन आहे त जल्द तारीख़ी माहिदो थी वञे। ईरान ते हमलनि जो ज़िमेवार अमरीका हूंदो, नतीजा बि अमरीका ऐं संदनि सहूलतकारनि खे भोगणा पवंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे धमकियुनि ते ईरान जो रद अमल। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त ईरान खे ॻाल्हियुनि ऐं मुआदे लाइ धमकियुनि सां झुकाए नथो सघजे। आज़ी जंगबंदी जो को बि फ़ाइदो न पियो थिए।

वफ़ाक़ी हुकूमत जी 17,500 अरब रूपयनि खां वधीक जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। बजट जी मंज़ूरी लाइ वफ़ाक़ी काबिना जो इजलास बि सुभाणे तलब। पघारनि ऐं पेंशन में वाध ऐं टैक्स रेवेन्यू जो हदफ़ 15,267 अरब रूपया मुक़ररु करण जो इम्कान। सोलर पैनल्स, स्टेशनरी ऐं स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली न करण जो फ़ैसिलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स जी शरह में 25% ताईं वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स जी पुराणी शरह बरक़रार रहंदी। रिवायती 12 गाॾियुनि कार्बन लेवी लगाइण जी तजवीज़। मकामी सतह ते तयार थियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियूं थियण जी उम्मीद। नई बजट में पेट्रोलियम 22 अरब रूपया वसूल करण जो प्लान। कर्ज़नि जो व्याज भरण लाइ 7,824 अरब ऐं दिफ़ाई शोबे लाइ लॻभॻ 3,000 अरब रूपया रखण जो इम्कान। एक्सपोर्ट जो हदफ़ 32.5 अरब डॉलर ऐं इम्पोर्ट जो खातो 70 अरब डॉलर लॻायो वियो। ख़िदमतनि जे शोबे में 11 लख, सनअती शोबे में 5 लख ऐं ज़री शोबे में 4 लख नौकरियुनि जो हदफ़ मुक़ररु। वफ़ाक़ी हुकूमत मुल्क में ग़ुर्बत ऐं बेरोज़गारी में वाध जो एतिराफ़ करे वरितो। गॾो गॾु अवाम जे सालियानी आमदनी में वाध जी बि दावा। तरक़ी जी शरह हदफ़ खां घटि थियण जो एतिराफ़। वफ़ाक़ी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकर्दगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तान जी मईशत जो खातो 452.10 अरब डॉलर थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़ख़ीरा बि 17.10 अरब डॉलर आहिनि। माशी तरक़ी जी शराबी 10.37% रही। खिते जी सूरतहाल ठीक हुजे हा त 4% ताईं तरक़ी वारी शराह हासिल करे वञू हा। मालियाती खसारो 0.5% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.5% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾियुनि सनअतनि

0: तरक्की जी शरह 6.5 सैकड़ो रही आहे। सिंध में पाणी जी शदीद बहरान ते वॾे वज़ीर मुराद अली शाह वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ खे ख़तु लिखी छॾियो। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरिहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मौजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो आहे त इरसाद सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: घर में रहंदी हैं
1: घर में
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन डॉट एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: सुनो आ तो के थायो गए।

0: 以，不可以，不可以。
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।